जब संभ कर मदम माजो भर गए मामच गर्म बार आया मैं ना तो गर्मी दिखे मामन अगर दुखादर समाज वाय खुरी जो बाल मार